चवर दे मालिक शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी चरण सरन अंदर सशोभित गुरु की लाडली गुरु की भरोसाई होई। प्यारी अते सत्कार योग सात संगत जियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह बुलाउण तो झिझकिया ना करो, ए तां गुरु दी बख्शिश है, गुरु दी देण है। एक बारी फेर प्यार नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो ए बर्मिंगम यूनिवर्सिटी दे स्टूडेंट्स ने अपराला कीता, बड़ा छलागा योग अपराला है। इसी तरह इहदे नाल नाल जिथे गुरमत दा प्रचार वधदा है, उत्थे नाल नाल संगीत दा प्रचार नाल नाल हुंदा है। असी देखदे हां जदों पहला मैं इत्थे आया, तो पहला मैं इत्थे आया 69 विच, उस वेले इत्थे कीर्तनीए भी बड़े घट सी। बर्मिंगम विच सिर्फ रसिया जी हुंदे सी, होर कोई कीर्तनिया इत्थे नेड़े तेड़े नहीं सी। खैर वक्त बदलदा गया, ते जदों मैं इत्थे 1983 च आ के रहायश दा कीता, ते उस वेले संगीत दा प्रचार बड़ा घट सी। बड़ा यतन कीता, उस यतन दा फलस्वरूप अज असी देखदे हां जगह जगह बच्चियां दियां संगीत दियां क्लासां। कोई भी देखदे हां बच्चा जी तबला सिखदा, आ बच्चा जी गाना सिखदा। सो बड़ी खुशी हुंदी जदों देखीदा इस प्रचार दे वाधे नूं। वुल्वरहैम्पटन विच स्वर ध्वनि सोसाइटी दा अग्गे कदी इहो जिहा प्रोग्राम नहीं सी देखिया, जिथे के उत्थे भी क्लासेस शुरू होईयां संगीत दीआं। सो बड़ी खुशी हुंदी है कि जे इह संगीत दा प्रचार इसे तरह हुंदा है। असी अपने वालों पूरा पूरा यतन करदे हां। हर साल असी रवि म्यूजिक कॉलेज वालों संगीत दा प्रोग्राम करया करदे हां, जिहड़ा इस साल दा भी 27 अप्रैल नूं असी कर रहे हां, जिथे जिहड़े स्टूडेंट्स संगीत विच हिस्सा लैंदे ने जां जिहड़े संगीत विच मेहनत करदे ने, तबले वाले गाउण वाले सितार वाले, उहनां नूं सर्टिफिकेट्स दित्ते जांदे ने। और सानू चंडीगढ़ संगीत समिति वालों एमए तक दी डिग्री दा परमिशन है, और एमए तक दी डिग्री दी सिलेबस उन्होंने सानू दिती, क्योंकि एमए दा जिहड़ा फाइनल है, फाइनल ईयर जिहड़ा है उसका एग्जाम उत्थे जाके देना पैंदा, बाकी दे असी इत्थे अरेंज करदे हां। सो इस प्रचार नूं वेख के, इस शौक नूं वेख के मन बड़ा प्रफुल्लित हुंदा है। तो इसे तरह यह शौक बच्चियां दे अंदर, वड्डियां दे अंदर सतगुरु पातशाह आप ही पैदा करदे रहन। गुरमत ने राग नूं पहल दित्ती है, महत्ता दित्ती है। हजूर ने राग पहलों लिखे तो बाणी बाद विच लिखी। सो मैं आप जी दा ज्यादा समा ना लवां, ते हुण असी आरंभ करदे हां कीर्तन। सब तो पहला आप जी दी सेवा च राग जैत श्री रखण दा यतन करांगे। जैत श्री राग दे अंदर आप जी नूं गुरबाणी दे शब्द जो इसे राग विच हजूर दे उचारण किते हुए हन सुनाउण दा यतन करांगे। आस है आप इसे तरह प्यार नाल शर्मन करोगे।

तुर्क दुष्ट सब जय किए हर नाम उचारा तिन आगे कोई ना ठहरे हो तिन आगे कोई

सुखमणि साहब अंदर कितना उपदेश सुंदर दे रहे। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा कहते ने, जिहड़ा प्रभु का सिमरन है सारे नाल उच्चा है, पावन है, पवित्र है, श्रेष्ठ है। सिमरन उच्चा क्यों किया गया? कहते ने कि सिमरन उच्चा इस वास्ते है, ना तेरा निरंकार है न ले है, नरक ना जाई। नाम जपन वाला सिमरन करने वाला नरकों के विच नहीं जाता, सिमरन करने वाला। जिहड़ा सिमरन करता वो नरकों का भागी नहीं बन सकता, इसलिए सिमरन सावे नाल उच्चा किया गया। प्रभु का सिमरन सब ते उच्चा,

0: संग हर दर्शन पाया सैन नाई पुतकारिया ओए कर कर सुनिया
1: कर कर किवें सुनिया गया हिर

हिरदे वसिया पार ब्रह्म। जो पार ब्रह्म ने हिरदे अंदर निवास कर लिया, भगतां में गणे ते भगतां दे विच ना आ गए। हिरदे विच पार ब्रह्म ने निवास कदों कीता?

कीर्तन हुआ रैन सुबाय। छड न सके संत जन राज द्वार न सेव कुमार सैन रूप

हम देव पिया मानो के नाम जपण वालियां दे देव, नाम जपण वालियां दे वड्डे जिन्हां नूं सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नामदेव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राये, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रिसाए। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ते दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी दे दर्शन होए ते भगत नामदेव दे प्यार वाला दूध नारायण ने पी के बख्शियां कीतियां। ते इसे तरह भगत नामदेव संतां दा संग करदे, नाम जपदे, परमात्मा नूं याद करदे अपनी उम्र बितांदे गए। थोड़े जे वड्डे होए ते उस वक्त दे महान योगी, महान तपीश्वर जिन्हां दा इक पंथ चलदा सी, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज दे पंथ दे विच दाखल हो गए ते चल पे उना दे नाल तीर्थां दे भ्रमण करदे करदे, ते जा करके द्वारका नगरी तो थोड़ी दूर बाहर स्वामी ज्ञानेश्वर जी ने विश्राम कीता। देखिया नेड़े एक खूह दिखाई दे रहा है, मगर उस दे विच पानी कोई दिखाई नहीं देंदा। खूह ते है मगर पानी कोई नहीं। ते ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचिया, देखिया भाई ए मेरे नाल जो चले

तेरी नारायण ने सुन लई। आइंदा समय विच जेड़े भी इस राह तो गुजरन गे ओ अपनी प्यास तेरी अरदास दी शक्ति द्वारा बुझाया करनगे। नामदेव ने शुकराना कीता नारायण दा, पानी पीता प्यास बुझा करके

ने देखिया मगर नामदेव दिखाई नहीं दिते, क्योंकि नारायण दे चरना कमला विच जुड़े ते ज्ञानेश्वर जी ते उना दी मंडली ते अगे नू चाले पा गए, मगर नामदेव दी समाधि खुली ते की देखदा है कि उस चौंक दे नेड़े तेड़े एक पठान खलोता है, ते उस पठान ने पगड़ी पाई हुई है ते उस पठान दे कोड़ी ने वछेरा दिता है। कदी वछेरे वल देखदा है नामदेव ते कदी उस दी पगड़ी वल देखदा है, ते पठान नू देखदे देखदे मानो पठान दे रूप विच्चों नारायण नू देखदा होया।

वीर कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़ चलती बार न कछ मिलियो ले लंगोटी तो सुतड़े असंख माया झूठी कारणे नानक से जागन जे रसना नाम उचारने असंख हजूर कहंदे ने असंखा ही।

पंच को झगड़ा झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे हन, अब मैं कौन उपाओ करूं, जे बिद मन को संसा चूके पवनिद पार परों, जन्म पाए किश पलो ना कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे हन, भाई सुख तां उना ही पाया है जिन्हां ने जपिया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तो सारे जग नू बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो ए दुख कांस्यों कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसार्यो किन बिद रहन रहो रे, बाप साब का करे लड़ाई माया सद मतवारी, बड़े भाई के जब संग होती तब हूँ ना है प्यारी, कहत कबीर पंच को झगड़ा झगड़त जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रमत

0: तीन तिहारी को न पार पाइत है कागज दीप सब करके कागज दीप सब करके
1: अर्थात सुमंगल की मस्त हो।

ऐसा नहीं कि मंगना माड़ा, हां मंगना चाहिए है, पर मंगना किवें है ते मंगना की। हुण साहिब गिनती पहले उन्हां दी दस देने कि जो मंग रहे ने, कोई मान मंग रहे, मान दा भाव है इज्जत रिस्पैक्ट, तान मांगो, तान दा भाव है जोर विल पावर ताकत, धन लक्ष्मी सुत दे कोई धन मंग रहे, मनी माया मंग रहे, सुत कहिंदे ने कोई पुत्र मंग रहे, लक्ष्मी कहिंदे ने कोई स्त्री मंग रहे। हे परमात्मा जिन्हें मंगते उन्नियां उन्हां दियां मंगा, हर कोई मंग अलग अलग कर रहे है, पर सब दियां मंगा तू पूरी करी जा रही। मान मांगो, मान इसलिए मंगया क्योंकि मान तो बिना, इज्जत तो बिना जिंदगी अधूरी। संसार विच रिस्पैक्ट इज्जत होनी बड़ी जरूरी। आ तुसी वेख लो कि निर्धन नू, कमजोर नू कदी किसी ने सन्मानिया नहीं, नेड़े बिठाया नहीं, इसलिए कहिंदे ने मान मंगे आ। फिर तान मांगो, तान कहिंदे ने जोर भी मंगे आ, जो तेरा दिता होया मान बरकरार रख के उन्हूं सांभ सका। धन लख भी सुत दे, धन भी होना बड़ा जरूरी है। साहबाणी विच कहिंदे ने ना, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे चित ना धरे। निर्धन नू गरीब नू कोई आदर नहीं दिंदा, इसलिए इन्हां चीजां दा होना बड़ा जरूरी है। मान मांगो, तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत दे। परमात्मा दे तन होवे, लक्ष्मी स्त्री भी चाहीदी है। भगत धन्ना जी कहिंदे ने घर की गेहन चंगी, जन धन्ना लेवे मंगी। घरवाली भी चंगी होनी चाहीदी है, सुगुण सुशील सियाणी।

घर विच होना बड़ा जरूरी है। तन बहुता होवे, हर खुशी घर विच होवे, ते जे घर पुत्र नहीं संतान नहीं ते तां भी दुख है, वह भी बर्दाश्त नहीं हुंदा। इस तरह हे परमात्मा हर कोई तेरे कोल मंग मंग रहा है। मन मांगो तान मांगो तन लक्ष्मी सुत दे, किस लिए मांग रहे? साजनो तू मीत मेरो गह तेरे सबके, तू मेरा सज्जन नहीं, तू मेरा मित्र नहीं, उस मित्र होने के नाते मैं ये मंगा तेरे कोलो मंग रही हां। सतगुरु कहंदे ने ये मंग जायज होगी क्योंकि तू उन्हूं अपना सज्जन बना ले, अपना मित्र बना ले। वाकई ही भाई जी उन्हूं अपना बना के मंगे ते हर दाद चोली पैसा

मंगी है। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कड़ी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवे मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा ना दिन विंदा ना रात विंदा, वो पुकारा करी जांदा। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना, कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रही। मंगती का पहला गुण है जी, कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हन, तालाब हन, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ए पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे। बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव नाल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,

जिस परमात्मा ने तेनू बोलन दी जाच दिती ऐ रसना, फिर उस परमात्मा दा सिमरन तू क्यों नहीं कर दी? ए जड़ी साड़ी जुबान है, ए है ते

इतना रोगी नहीं होता जिन्ना कि बहुता खान वाला रोगी होता है। भुखे घट मरते ने, बहुते खान वाले ज्यादा मरते। ए रसना सतगुरु जी उपदेश कर रहे ने, ए रसना तू अन रस राच रही। अन रस कहते ने होर रस, होर रसा विच ते पै गई, ए भी खा लवा वह भी खा लवा, किसी की निंदा चुगली की, किसी नु माड़ा कहा, किसी नु गालां कढ़िया, माड़ी गल करके किसी का घर बर्बाद कर दिता, ए काम ते तू कीता। पर ए रसना तू प्रभु का सिमरन नहीं किया। खाण दे भी रस हैं, झूठ बोलना भी का रस है, निंदा चुगली करनी भी का रस है, ए ते सारे ही रस।

के अपनी जबान नु समझाइए ऐ रसना जे गुरु महापुरुष ओ कहंदे ने अकाल पुरख शरीर दे जितने रोम ने इन्हां नु

कौड़ियां लेके बाजार चली गई। मरिया हुई मच्छियां लेके आई ते कहन लगी वाल्मीकि दे कौड़ियां बदले तू एक जान ले, ए जिहड़ियां मच्छियां ने इन्हां विच भी ते जान सी, किसे ने इन्हां नूं भी ते मारिया, इन्हां कौड़ियां बदले मैं कितनियां मच्छियां लेके आई हां, तू एक जान लई इत्थे ते किन्नियां जाना किसने ली, ना कोई पुन है ते ना कोई बाप है, बस मां दी ए गल पल्ले बन गई। उस दिन तो मैं प्रण कर लिया कि किसे कुल कुछ मिले भावे ना मिले।

बच्चे दा पहला गुरु उस दी मां हुंदी। जे मां चंगी सिख्या देवे ते बच्चा नेक और चंगा बनेगा, पर जे मां ही अपनी जबान तो माड़ी सिख्या देवेगी ते फिर बच्चे दा जीवन ते बिगड़ेगा। कई बारी मावां ही बच्चियां दा जीवन बिगाड़दियां हन, झूठ बोलन दी आदत पा के, चोरी करन दी, चीज लुकाउण दी आदत पा के। हुण मां ने कहा कोई पाप नहीं कोई पुन नहीं, ते पुत्र ने मन लिया। आर्या समाज दे सत रिखी इन्हां ने तौणा नीवियां कीतियां ते बाल भी ਕੁਹਾੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।

तू मेरी हुण पालना कर। पर वाल्मीक तू पाप कर पावे पुण कर, पाप दी कमाई लिया घर विच पावे नेकी दी कमाई लिया, पर अंत वेले

सत्संग किस रसना देना, माड़ा बोला ने जीवन माड़ा होवेगा। इस रसना दे नाल उस वाहे गुरु दा

साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं हिंद दी चादर क्यों आख्या गया? इसलिए उन्हां नूं हिंद दी चादर आख्या जांदा है। तेग बहादुर साहिब पातशाह ने उस वक्त अपनी कुर्बानी दिती जिस वक्त के इस हिंदुस्तान नूं बचाने वाला कोई भी नहीं सी। उस वक्त गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह ने उन्हां मजलूमां दी बांह फड़ी ते हिंद दी चादर कवाया। अला यार खां जोगी ने बड़ा सुंदर करके लिखिया है।